0: हेलो संजा, की के?
1: राउदत्ता, कोबा, मिहा रेमुंग आतो वेच्चे ये, मामा ए बोले राउदत्ता नास्किंग हास वेगे।
0: मामा कैरी बुने हास नु आशे, मिहार वरक कैरी गा, इंगे, टेक्सी एन्नो लिपिगे नेला स्वी, दे नु आने लाहे, ओके।
2: আমি তো না মার করলাম, মিথা না।

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हमें कनी दिवे ही राज्य क्या डूं

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुर कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूं आदि बुद्ध दो होगेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूं
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य के अड़ूं
3: कानूना कवायत को मिनिमम कमा असासे हक को तो रखा तेरे को दनी क्या मिंबर रखा
2: कानूना गवायत को रायी तुंगे सलामता रखा तेरे कं कशवर को दनी की ने
3: कानूना गवायत का हुर्मे तेरे को गीतन जहनी की बे
4: कानून तक गवायत का अहुल वेरवे हेलुं तेरे वुमकी कोम्बे फार्दे गिवस अमील रखा तेरे कमशा मुले मुझतमाओगे हमजहुमा नुहान बेनु तेरे कमे
2: कानूना गवायत का गुले गोतुं तियाबे फुलं बेनु वासुवाल तक जवाब के नस्तिलमा दिवी राज्य गडुंगे नस्तनी
3: तरह
2: कोम्बे होनीर दोहे गरेगंडो नुए जहायरु स्टूडियो एम वगुतु
3: एंहा 47.49 किलोहर्ट्ज़ मीडियम वेव आदि 89 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड
2: हमें कनी दिवे राज्य गड़ो
5: मी हकु तिमाया वाहक दक्का मंदारुगा एन एने अमुखातब को वाहक दक्का आयरुगा बस बुनानी अलगंडु कम वानम तिमा कम वानम अनकुन्ना मुखातब को मिबुननी देम्मेतिया विदालु वीये तिमागे नफसम मुखातब को फ एहेम मी हे गातुगा वाहक तके दन्नवनी एकम अनकको तिमागे गातुगा एच्चे बुना आयरुगा रीत बहुम मिबुननी देम्मेति विदाळु विये अळगोन मेंग अमिल्ला नफसम मे मुखातब को फेने गातु गामि बुननी देम्मेति विदाळु विये
2: दिवसक वीति दिवे बहुगे कवादन एहतराम कुरवा
6: गडिम मेंदमुं अलिवे देगडि तिरिस मी दिवे राज्ये गडु
3: मी अशार हरों मतेगे उम्र फ्रें खास कुरेफावा प्रोग्रामे में प्रोग्राम का अशार हरों दर्शुगे खुड़को देन्ना नुगले अडा वाहकुरूं एकशी गेंवे